0: रेडियो सारंग 107.8 FM।
1: रेडियो सारंग 107.8 FM। रंग रंग दा बदक इत्ते तुलु प्रसार।

पतला पतला रेशमी कुर्ता चूड़ीदार पजामा, पतला पतला रेशमी कुर्ता चूड़ीदार पजामा, एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के

कमर है हलवे कद्दू जैसी आओ दुआएं मांगे, अरे कमर है हलवे कद्दू जैसी आओ दुआएं मांगे, ऐसी लगती जैसे लगी हो डबल रोटी को टांगे, और डबल रोटी को टांगे ढूंढ के लाओ इसके लिए जो पहलवान होगा माँ।

क्यों ठीक है जवाब तो दे, अरे मैं हूँ तेरा आशिक ये सारी दुनिया पहचाने, पर अंदर वाली बात जो है वो मैं जानू तू जाने, सच है ना बोलती क्यों नहीं वो मैं जानू तू जाने, अरे दुनिया वाले क्या तेरा मेरा ड्रामा, एक जुल्फ के छह टुकड़े ये देख के मचा हंगामा, लुट गए मामा।

0: बाई मका मन जाले कतरीन बाई तुवे मका कतरीन तो गाले ये कतरीना
1: माना यूचिना
0: ये कतरीना
1: आना यूचिना
0: बाई कल तन माइम वर्त माइम तंतु का पैंड्रा।